ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे।